बेमुख होवन बेमुखा, मैं जे बेमुख मुख डिठे, बदर पापा बदर पा, मैं जे कर वैरी इठे, कर कर सिठा बेमुखा, आपो बुरे जान कै सिठे, लिख न सकन चित्रगुप्त

सत समुंद समावन चिट्ठे चिट्ठी हूँ तुम्हारे लिख लख लख एक दो एक दुठे कर कर

हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अंकार करंदा विश्वास घाती आकृत घन

साधसंगलो न आवई, जैसो मन लागे पराधीन हीन दीनता में, साधसंग सतगुर सेवा न लगावई। जैसो मन किरत बिरत में मगन हो, साधसंग कीर्तन में न ठहरावई,

रैन सैन समे सब लोग में संजोग पो चकवी बेयोग सोग पागहीन जानिए। जैसे दिन करके उदोत जोत जगमग उल्लू अंध कंध प्रचीन उन्मानिए। सरवर सरता समुद्र जल पूर्ण है त्रिखावंत चात्रक रहत बकुबानिए। तैसे

रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन सोपाहीन पागहीन तपहीन बावरी दृष्ट दर्शहीन शब्द श्रुतहीन बुद्ध बलहीन सूते हस्त न पावरी।

राग गौड़ी माला विच ऋषभ गंधार धैवत सुर कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दी जाति संपूर्ण वादी धैवत संवादी ऋषभ अते समा राग दा पहला पैर है। इस राग विच पाया लाल रतन मन पाया शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

पीने आप साजा पीने रचाओ दुई गुर साजे का आसन रिठोचाओ दाता करताप तू तुस्ते वे करे पसाओ तू जानो ही सबसे दिल ऐसे जिंद को कार्य आसन रिठो जाओ।

एक कर्म छड़ के तू करोड़ा कर्म कर। भुखिया नू रोटी खुआ, जल चका, सेवा कर। पातशाह कहंदे ने तू एक कर्म छड़ के कई कर्म करेगा, जे नाम हिरदे विच नहीं वसिया नरकां दा बुआ जरूर वेखना पवेगा।

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असा निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाणे आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखां दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान ते भगती लाएं हरस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना दी प्राप्ति हुंदी है। इथो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वरतीए उन्ना ही जिवें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहुत सागर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावे कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे को वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां के कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक है पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
अनंत काल तों अनादि काल तों सारे मंगदे आए ने ते ओ दे के जतलांदा भी ने ओनू कुछ इवजाने च लैण दी भी लोड़ ने पंथ दे वाली बेकसारा यार काशफ सरार काशफ लफ्ज है फारसी दा ते सरार भी फारसी दा लफ्ज है काशफ हुंदा है इनकशाफ करने वाला प्रगटाण वाला इसम फाइल ते सरार सिर वाहद सरार जमा सिंगुलर प्लूरल एक बचन बहु बचन सरार मीन्स बहुते भेद जीवन दे अनेका ही पेता नूं सरलता विच कर देने वाला कौन है काशफ सरार गुरु गोबिंद सिंह बाबा नंद लाल जी कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस परमेश्वर की वड्याई करते हुए बेअंतता दसते हुए वड्डे दाते दी हमद करते हुए कहते ने तू इतना वड्डा है के रोख रूहान की रोजी ना टारे रोजी हिराज विलोक तराजक रोख रूहान की रोजी ना टारे जेड़े तेनू मनदे ने तेरे प्रेमी ने तेरी होंद दे धारनी ने तस्लीम करने वाले ने उना दी ते गल छड़ दे तेरे भगत संत भगवती महापुरुष महात्मा नेक रूहां रब प्रस्त ने उना दी ता गल की करनी उना वल ता है प्रभु तेरा ध्यान ख्याल होना ही है पर तू ते एडा बेअंत है एडा बेनियाज है रोजी हिराज विलोक तराज कर रोख रूहान की रोजी न टारे रोख मीन्स रुखिया रूहान जमा है रूह दी तू ता रुखिया रूहां नू भी ताजगियां देना है रुखिया रूहां नू भी सुखिया रूहां नू भी पालदा है जिन्हां विच लचक ना होवे लचकदार लकड़ी नू दरख्त गजा दे जांदा जड़ा गजाज दे जांदियां ने हरियावल रहिंदी है ते उहदे विच लचक रहिंदी है पर एक लकड़ी सुक जांदी है उहदे विच जीवन नहीं हुंदा समझो कि मर गई अकड़ गई ए भी एक साधारण तकनी नाल वेखीए ते कमाल दी गल है एहदे चो बड़ी रास दी गल निकलदी है जिंदा आदमी कदी नहीं आकड़दा उहदे विच लचक रहिंदी है ऐन इसे तरह जिंदा दिमाग लचकदार हुंदा है मोया दिमाग आकड़िया होया हुंदा जो बंदा आकड़दा है होमे विच आकड़िया होया उन्हूं मुर्दा समझो क्योंकि जिंदा तां कदी आकड़दा नहीं मुर्दा ही आकड़दा है पर गुरु साहिब जी इत्थे कहंदे ने सच्चे पातशाह तू बड़ा बेअंत है जो रुखे ने सुके ने जिन्हां च लचक नहीं ते मुनकर ने ते तो तेरी होंद तो इनकारी ने उन्हां नूं भी तू अपने गैबी खजाने विचों वड मुलियां दातां दे ही चलिया जांदा है हवा एक छिन एक श्वास ना आवे ते रचना मुर्दा हो जाए धुप मट्टी ऑक्सीजन होर अनेका पदार्थ तू अपने गैबी खजाने विचों देंदा ही जाना है जो ते तो मुनकर ने तेरिया दातां भी ले जांदे ने तेरिया बख्शियां भी मानी जांदे ने हे मुने परमेश्वर तेरिया नेमतां भी मानी जांदे ने ते तो मुनकर भी ने पर फिर भी तो उन्हां दी परवरिश करदा जाना है गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने रोख रूहान की रोजी ना टार तो इस शब्द अंदर साहिब गुरु अर्जन देव महाराज श्री गुरु रामदास महाराज कल्याण राग दे इस शब्द अंदर फरमांदे ने के मैनू ते ओही वड्डा दाता दिसिया है मैं हुन निश्चा कर लिया है के दूजे पासों मंगिया पूरी नहीं पैंदी ते नाले किसे देवी देवता हूरो मलायक फरिश्ते कोलो मंगा ते उन ते मंगके ही देना है मंगत्या कोलो मैं क्यों मंगा मेरे गुरु ने मैनू सोझी पवा दिती है गुरु नानक पातशाह दे दरो मैनू सोझी मिल गई है के परमेश्वर ही वड्डा दाता है ते जे ओनू मंग लईए ता फिर इधर उधर मुख दंत रसन कस जाए इधर उधर मंगण दी लोड़ नहीं रह जांदी हाजत नहीं रह जांदी ओ सब हाजतां रवा करन वाला मालिक है ते मैं हुण इस निश्चे ते पहुंचा हां किथों मंगा हो कौन है इस ते मुकाबले दा दाता साचा साहिब है ते वड्डा दाता है उस दे भंडारे अखुट ने वाह
मुह दूजी नाही ठौर जिसके हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसी दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए। कई बार वेखण चाहुंदा है मालिक मकान या मालिक दुकान कहिंदा है मुआफ करो बाबा मुआफ करो बाबा, वो अगे टुर जांदा है। सारे बाजार च गया मुआफ करो बाबा मुआफ करो बाबा ही हुंदी गई। कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने कहा कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन बड़िया बड़िया दुकाना सन पुश्त दर पुश्त चलन वालिया ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है सिक्का भी नहीं है गया नहीं है तू। उन्हें कहा जी गया तो सा फिर होया की है। जदो मैं दुआ कीती जदो इल्तजा कीती जदो खाली ठूठा अगे कीता ते उन्हें अगे कहा मुआफ कर बाबा मुआफ कर बाबा। इसे तरह मैं सारे घर दे अग्यो दी आया बीबिया माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ इदा कहंदे। मैं अगे तो अगे टुरदा गया उन्हां दे माफ करो बाबा कहण नाल टुरदा गया बाजार मुक गया घर मुक गया इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे ताइयो हाल हुंदा है पर जे तू किते टिक के किसे एक दे परवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्ताक मेरादी नाल बह जांदा ते मैनू यकीन है तेरा ठूठा सखना ना रहंदा। हुंदा भी एवें है किसे आख्या माफ करो बाबा कम काज करके फिर आए फिर उथे खलोता तेनू क्या सी जा अगे फिर कम लग गए तू फिर इथे खलोता है गया क्यों नहीं। वो पक्का मंगता है ते निश्चय वाले आखन लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी कोई मदाऊ कीता है किसे ने किसे निमंत्रण दिता है पे इथे अगे आ जा तुसी ता कही जाओ अगे चल माफ कर मैं ता हुण तेरा दर मान लिया है तेरी दहलीज मान ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू ए निश्चय हो गया है मुहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता टीठ होके नहीं मंगदा जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल टीठ होके नहीं मंगदा टीठ कहंदे ने तोरी जाए कड़ी जाए मोड़ी जाए फिर उथे ही रहना। जब तक कोई टीठ होके नहीं मंगदा उदो तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नु भी ऐसा एक जगह आख्या टीठ शब्द अलकाप वरत्या है आडीठ धर्म आडीठ धर्म अत टीठ करम। वाहेगुरु तू भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है ये तो मुराद है अत पुख्ता आडीठ धर्म अत टीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासा करदे जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है वो करन कारण समर्थ हो कर दई है आडीठ धर्म अत टीठ करम। जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मौत के दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासु दा अत टीठ निश्चा ना हो जाए परमेश्वर उत्ते कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए आपा समर्पण ना कर देवे उदो तक कई बारी तेनू शक्कां शकूकां दा शुभात दा शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी आपके तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नू छड़ के जाना किते नहीं चाहिदा क्योंकि मैं निश्चा धार लिया मोह दूजी नाही ठौर जिस पे हम

द्वीप सुबह करके और सात समुद्र की मत कहो। काट वनस्पति सगरी दिख बहु के देखन खाज बन हो। सारसता पकता करके जुग कोट गणेश के हाथ रखे हो। काल कृपा

अंत न कहो भैया कोट बरात हमारे संगो कोट बरात हमारे संगो अनक विधि समझाओ अनक विधि समझाओ हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आप

0: ब्राह्मण ने कहा गंगाराम अमरदास नहीं तो तन गुरु अमरदास का थी तो हाँ हाँ वो बुढ़ा अमरदास आखो श्री एक मोड़ है प्यारी साहब सिंह जिंदगी भी अंदर आंदा है जिथे आके इंसान के मेरी दात प्यारी इस मोड़ वास्ते ही क्योंकि आंदे इस वास्ते ही किसी महापुरुष की संगत की लोड़ है नहीं तो आदमी वड़े वड़े फेल हो जाते इस सरपनी से कौन है बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महावेश छल तो कौन बचदा त्रै गुण मोया मोया आकाश हम सदगुरु राखे देकर ब्राह्मण ने कहा तन गुरु अमरदास गंगाराम अपने मुनीमा वाल तक दे कहना भी वेखो कोई अमरदास का लैण देण अपने नाल है कोई खाता मुनीमा ने सारिया गई खोल के सिर फेरे देखिया सेठ जी अमरदास का कोई खाता नहीं वो भी कोई वही जिन्हें गुरु का खाता कोई नहीं आखो श्री भाई वही अधूरिया वो खाते संपूर्ण नहीं हैं जिन्हें पूरे गुरु का खाता नहीं चल गंगाराम बड़ी आकड़ ना देखो जी कैसे लोग ना कोई ले ना कोई दे एवं पैसों की होंगी ब्राह्मण ने कहा गंगाराम गुरु की बख्शिश नु भुल गए अज एडा आकड़ के पिया बोलते है मैं आप तेरू तकिया है गुरु दे लंगर तू झूठे पाने माई जा अज माया के चलकारे कृष्णे तू गुरु नु भुल गए कह लगा है तो गुरु पर गुरु का काम है थोड़ा भी होंगी भेज देनी है अज 500 भर दिता कल 1000 भी होंगी भेज देवे हूं मैं माया जाया थोड़ी कर रही आखो श्री पर उस पता नहीं सी जाया माया तो वह होंगी है जी बुरे पास लगे शराबा कफाफा च लगती भैड़े कमां च लगती है जड़ी गुरु नानक में लेखे लग रही है वह तो सफल हो रही गुसाई तुलसीदास जी ने लिखा है ना माया है तो भात की दऊ चलावे रहा एक ले जावे नर्क को एक स्वर्ग ले जावे बुरे पासे लाओ नरका ना बुआ खोल दी है गुरु नानक ने लेखे लाओ गुरु नानक नाल जोड़ दी बाबा जी बचन कर दे सर पर अजकल बाबे वाल किसी विरले की लगती है बाबरे वाल बहुत ही लख रुपया टैक्स तो दे देवांगे पर जे बाबे वाल लानी होवे तभी 1000 रुपया लिख आखो श्री हो पर नहीं बाबा जी बचन कर दे सन माया मिल जानी कोई वड़ी चीज माया मिल जानी ए कोई वड़ी चीज नहीं पर माया नु गुरु ने लेखे लाना है गुरु की बख्त किसी भागा वाले की लगती पर माया लगती जरूर अग्ञानी पुरुष इन सांभ सांभ के रखता है पर जिस तरह पानी चलता रहता है इसे तरह माया भी चलती रही एक पासे बन लाओगे पानी दूजे पासे चलेगा तीजे पास इसे तरह जे कोई आदमी चंगे पासे माया नु नहीं लावेगा तो बाबा जी बचन कर दे सन फिर डॉक्टर ले जाएंगे आखो श्री इन्हें तो चलना ही ऐसे रोग लग जाते जिन्हों का नाम सुन के शरीर को बाबा जी बचन कर दे सन वकील ले जाएंगे मुकदमा पै गया बस चोर चुके ले जाएंगे पर पागल वाले गुरसिख जो गुरु नानक ने दी हुई दात गुरु नानक ने देखी माया माड़ी नहीं ये सारा डंबर माया दे ही है जो गुरमुख परिवार से बाबा जी ने मान बख्शी की थी राज जोग बख्शिया है पर ए माया गुरु ना जाए पर कई माया डंग भी लेंदी है माया होई किन्हां वास्ते नागरी है जिन्होंने गुरु बोल जवाब दे दिता बेचारा ब्राह्मण वापस आया साहबां दे दरबार च मत्था टेकिया रो पिया कह लगा महाराज हजूर कह लगे सुना मिल गया 500 रुपया रो के कह लगा महाराज जे तुहाडा गंगाराम नाल कोई लैण देण नहीं सी तां मैनूं क्यों इतनी दूर भेज हजूर कह लगे नहीं मिले आपां महाराज तो अहंकार च बोलता हजूर कह लगे कोई साहब जी चादर दी बुकल मार के बैठे सज्जा हथ कढ़िया ते इस तरह करके मुठी मीट के जेब च पा ली ते कह लगे अगे तां साडा गंगाराम नाल लैण देण सी गुरु नानक सी सा ते गंगाराम सी गुमास्ता जो आपिया कहिंदा तां अज तू लैण देण कोई जिस तरह बटन उपर कर दई फौरन नेरा हो जाता है इसे तरह प्यारी सात संग साहबा ने जिसे ने बख्शन वाला बख्शिश वाला बटन जेड़ा सी उपर किया फिर उसे तरह काटे आखो श्री है सतगुर से गणत जो रखे हल पलत सब तिसदा गया मित चहिया उपावे चकू सुते चखदा चखदा ओ चढ़ पया नित उपाव करे माया धर्म कारण अगला तन भी उड़ गया क्या ओ खटे क्या ओ खावे जित अंतर सहसा दुख पया निर्वैरा नाल जो वैर रचाए दे ताप जगते का तिन सिर लिया उन्हों अगे पिछे तो ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਾ ਮੋਹਮ ਪਿਆ।
1: ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅਸਲਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਤੀ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਸੋਨਾ। ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੰਗੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰ ਦਰ ਠੋਕਰਾ ਖਾਂਦਾ, ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੀ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਲੰਗਰ ਚ ਪਹੁੰਚ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਠ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਦੇਵੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦਇਆਧਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮਾ ਰੋ ਨਾ, ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੰਗ ਲੈ ਆਖੋ ਸ਼ਰੀਫ। ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼? ਇੱਧਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮੰਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼। ਆਓ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੋ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਰੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਅਰਦਾਸ, ਪਹਿਲੇ ਸੇਵ ਖੋਲੇਗਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ।

बेमुख होवन बेमुखा, मैं जे बेमुख मुख डिठे, बदर पापा बदर पा, मैं जे कर वैरी इठे, कर कर सिठा बेमुखा, आपो बुरे जान कै सिठे। लिख न सकन चित्रगुप्त सत समुद्र समावन चिट्ठे, चिट्ठी हूँ तुम्हार लिख लख लख एक दू एक दुतिठे, कर कर सांग हो रहे आ होए मस्करा सवा सब ठिठे।

पर हो बेमुख मंदा चोर यार जुआर हो पर घर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अंकार करंदा विश्वास घाती आकृत घन

फिर गुरु शरण साध संग लो न आवई। जैसो मन लागे पराधीन हीन दीनता में, साध संग सतगुरु सेवा न लगावई। जैसो मन किरत बिरत में मगन हो, साध संग कीर्तन में न ठहरावई।

रैन सैन समय सब लोग में संजोग पो, चकवी बेयोग सोग पागहीन जानी है। जैसे दिन करके उदोत ज्योत जगमग, उल्लू अंध कंध प्रचीन उन्मानिए, सरवर सरता समुद्र जल पूर्ण है, त्रिखावंत चात्रक रहत बकुबानिए, तैसे मिल साध संग सकल

मेरी दृष्ट दर्शहीन शब्द श्रुतहीन बुद्ध बलहीन सूदे हस्त न पावरी प्रीतहीन रीतहीन पाए पै प्रतीतहीन चित्तहीन वित्तहीन सहज स्वभावरी अंग अंगहीन दीना तीन परची ना लग

दुर्योधन। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम। मन बिरतियां नूं एकाग्र करो। भाई साहब लिखते हैं, फिटका होके बोलिया दुर्योधन की प्यासी नौकरां दे घर। भाई साहब लिखते हैं,

चलो ठीक है, मेरे नाल तां तुहाडी शुरू तो बनी ही ने, भगवान नूं उलांबे दे रहे, मैं ते तुहानूं माड़ा ही लगना, पर ए भीष्म पितामा ए कर्ण वर्गे इतने योधे ते द्रोणाचार्य ए तां माड़े नहीं ना सन। असी रात तुहाडे लई इतना इंतजार किया, सारी सभा बैठी रही, तुहानूं इतना ना मन विच ख्याल आया भाई इतने वड्डे बंदे मेरे इंतजार च बैठे ने ते तुसी जाके नौकरां दे घर। सोचण वालियां गल्लां ने गुरु की साथ संगत। कई बार असी हंकार नाल बहुत कुछ सोच लैने, बहुत हंकार आ जांदा, साडे वर्गा कोई नहीं, लेकिन भाई साहब उन्हां मनुखां दा हंकार तोड़ रहे हैं। ये वार सुना के

राजा बोली बोली जा रही, ठीक है भाई। हुण मैं बोला, भगवान ने आख्या, हुण तू गल अपनी पूरी कर ली, हां हुण मैनू जवाब दियो। भगवान ने आख्या, हुण तू सन्मुख होके सामने होके मेरी गल सुन। तेरे घर विच सबो कुछ सब, पर एक गल मैनू नहीं दिसदी, जिथे

राग सारंग सदियों तो प्रचलित एक सरल मधुर अते लोकप्रिय राग है। अनेक लोक गीतां दियां धुनां इसे राग ते आधारित हैं। चरवाहियां दी वंजली अते सुपेरे दी बीन उते इस राग दियां मधुर सुरावलियां आम सुनाई दिंदियां हैं। सुपेरे दी बीन चों जदों सारंग दी धुन निकलदी है तां सप मस्त होके नच उठदा है। सारंग दा प्रभाव अति ठंडा है, इसलिए सिखर दुपहरे गाया जांदा है। गुरु महाराज ने सारंग राग विच मन दी तपश मिटा के ठंड वरताउण लई सारा मजमून ही गुरु शब्द दी महानता दा रख्या है। ये पता भी दिता है कि नाम दी कमाई सतसंगत विच ही हुंदी है। काल खाए किछ हथों दे नानक राहो पछाणे से, इसका उपदेश इसे राग विच है। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच दोनों निषाद लगते हैं। गंधार अते धैवत वर्जित हैं। वादी ऋषव अते संवादी पंचम है। गायन समा है दिन दा तीजा पहर। सारंग राग विच पहले शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर परमजीत सिंह जी। शब्द दी आरंभिक तुक जप मन जगन्नाथ जगदीशरो अते दूसरे शब्द नूं गायन कर रहे हैं भाई दिलबाग सिंह भाई गुलबाग सिंह जी। शब्द दी पहली तुक है हर हर संत जना की जीवन। श्रवण करो पहला शब्द जप मन जगन्नाथ जगदीशरो।

अगम निगम उदरण जला जमया गुरु अमरदास हे थपयो परगामी तारण तारण आगे अंतक बजे।

गौड़ी बिन सतगुरु के ना पाया, बिन सतगुरु के ना पाया, सतगुरु बिन आप रखे अंतर पर आग सुनाया, सतगुरु मुनि ऐसा मुक्त है जिन्हें तो मोह चुकाया।

शस्त्र प्रमाण तीर, तीर मतलब निजा, तफंग तीरो तफंगो बंदूक, बड़ो राम जंगो रिवाल्वर, धनक धार अनियर धनसबान और उसने तीर जेड़े ने अनियर वर्गे होने चाहिए, अणियाले तीर जेड़े दूसरे तीर ने ना वो वज जानना ते मुड़के कढ़े जा सकते हैं ते आदमी बच सकता है, पर अणियर तीर जेड़े ने वो बार नहीं आउंदे, जदों एक बारी अंदर तस जानना जो खिचोगे नाल ही अंदर भी नाल ही लै आऊंगी, ओदिया दो कड़िया होंदिया एवं मुड़िया हुई है, एक सीधी होंगी तो दो एवं मुड़िया होंगी, सीधी के अंदर चली जाती तो बहर आने लगे दूजिया जड़िया ने फिर कहदिया हूं आ जा अकाल पुरख के कोल ही चल रहे हैं। हां जी इसलिए जे मेरिया भैन कोल कि होंगे ना शस्त्र दिल्ली यह हाल नहीं होना जोड़ा होया, पता की हाल हो सरदार साहब होनी शीसगंज साहब दर्शन करने आ रहे, उन्होंने सरदार ने पूछे मोटरसाइकिल से बैठे हुए, उन्होंने नहीं पता कि अज यह भाड़ा वर्तना है, डांग दे के मोटरसाइकिल के तारा च डेग के वारी वारी उन्हें ड्यूटियां लाई हुई से, एक ने सरिया मार गया सरदार जी के सिर पर वो थले डिग पे, दूसरे ने धार मारी पिस्तौल पेट्रोल की, तीसरे ने वो जिद सिगरट पीते होंगे एवं करके वह दाड़ी भी सिखा की चट फूकते थे, उन्हें अग लाती उत्थे सड़ बह गए, जिहड़ी बीबी जी सी बेचारे बड़े मायूस घबरा गए भजन की कोशिश, पर दुष्टा को कितने भजना कोल ना ते तीर ना तफंग ना राम जंग ना धड़क तार अलियर ना कबंध कोरड़ा, तो कोल की सी जा राती टीवी वेख के आए थे जाके हम वी सी आर वेखना सी, ये कोल सी ते बाकी कुछ नहीं सी, गहने पाए से उन्हें दुष्टा ने एक ने इधरों फड़िया दूसरे इधरों फड़िया कपड़े फाड़ के सड़क के शरेआम बेइज्जतियां कीतियां, उन्हां दियां जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह दे सिंघां ने इन्हां दियां धीआं नूं दुष्टा दे कोलों छुड़ा के ते घरीं जा के छड़ के बाइज्जत तौर ते छड़ के ते आउंदे सी, दुष्टा ने यह नहीं सोचा कि भाई इन्होंने कभी साडे ते उपकार किए, ध्यान दो कोई जकारे फिर छड़ लेंगे जरा हुण कर लेंगे, यह नहीं सोचा गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह कोल ब्राह्मण तिलक लाया होया जंगू पाया होया ते बहुत रोंदा होया करलाउंदा आया कहिंदा महाराज मैं बच्चा व्याह के लिया रहा सा ते मेरी नूह नूं आ दुष्ट जिहड़े ने मुगल दुंबे खाण वाले पूरा पूरा बकरा खाण वाले वह खो के लै गए, गुरु गोबिंद सिंह साहब एवं सिंह सजे से उन्हें आख्या भाई अजीत सिंह जी तुम उठो अपने साहबजादे को उठो नाल दो चार सिंह लै लो इन्हों को एड्रैस लै लो और उस देवी हुणे ही आजाद करा के लियाओ और इस पंडित के घर जाके आप पूरी हिफाजत नाल छड़ के आओ, उन्हां पंडितां ने अज उन्हां अजीत सिंह दीआं भैणां नूं बाजार दे विच नंगिआं करके साडी अखां दे सामने इन्नी बेइज्जती की जो मेरे को कई नहीं जाती, लेकिन मैं कहना सिंगो ए पांच शस्त्र रखो धड़क धार अड़ियर ऐसे तीर रखो बार आने लगे नाल यांदरा कमंद कोरड़ा, कमंद कोरड़ा एक ऐसा शस्त्र हुंदा है ये सरिये लैके आते से ना मारन वो सरिया लैके जो आवे कमंद कोरड़ा ए भुआ के सरिये से मारी दा वह फिर एवं बल पा के सरिये नूं काबू कर लैंदा खिच के सरी अगले का अपने हाथ च फड़ लेता उन्होंने हथे कर सीता एक ही छुट्टी का बस फिर बोरे सो दिया, इस वास्ते अज तुसी बाबा दीप सिंह साहब शहीद आजम का दीवान मना रहे हो, यह तुसी प्रण करके जाओ शस्त्र की धार नहीं बनना डरना नहीं, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने यह खंडे का अमृत सब सिखाया, खंडे का अमृत क्यों सिखाया जी कृपाल का भी सिखा सकते होर भी किसी चीज खंडे का, खंडे शस्त्र संस्कृत मौत कहते हैं मौत खंडा, खंडे का अर्थ है मौत, तो महाराज ने उन्हें पानी घोल के सिख न प्यारता मौत घोल के सिख पी गया, सिख गुरु का सिंह मौत घोल के पी गया, तो दुष्ट कहता मैं तेन वेख लूंगा मार दूंगा, तो सिंह आता
ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਮੈਂ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਵੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇਕਲ ਰਹੂ, ਕਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਸ਼ਸਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।

इससे बड़ा गुफराक है। बिना शस्त्र जे आप केस धरे हुए हो शस्त्र ना हो गुरु गोबिंद सिंह कहते सिखो भेड़ बकरी तो वध तुसी कुछ नहीं। इसलिए तुहानू

0: अच्छा हो ऐसी
1: मैंने अच्छे का विचार पाप वृता ऐसी
0: तन कर मत की मन माहे बनोई।